0: शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजामि पाप्मा भूया सग्गस्वाहा
1: स्वाहाभ्यो
0: देवेभ्य स्वाहा
1: भुवाय भूमाय स्वाहा
0: क्षितये स्वाहा
1: च्युदक्षित

इश्क बयां करने को रूह से निकली हुई ये आवाज पहुंचे तुम तक, बस यही है दुआ मेरी साईं, यही है दुआ हमारी।

मुकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दम् माधवम्। हे वामन को विराट करने वाले भगवान, मेरी क्षमता नहीं है आपके सामने मैं गाऊं, लेकिन आपकी परम कृपा है मुझे आप दिव्य स्वर दे कि मैं सदैव हरि का गुण गाता रहूं।